मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी की जान है, फिर भी बशर को कितना गुमान है। ए इंसान, तू इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया, मौत को भूल बैठा, गफलत में सो गया। याद रख, ये सांसें अमानत है, तेरी जागीर नहीं,